intensa erano sa grieta. Sama in kuba darma milcha. Yochi. Ode kuhalu. Raat kal ko zamana ke tha. Sat bhane pachi laat khane. Ar jhuto bhane pachi pet bhari bhat khane. Yo to yo chiz adur tamai ko pasand na bhair. Ani isko naam ke tha? इसको नाम चादुरी और पीरे नून, इसको नाम चादुरी और रातो नून, इसको नाम च कालो नून। एर एता जानवर को प्लेट मारा जानवर ने खाने बिचारा भूनी वार था।